0: जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, 98.1 FM 4EB शेयरिंग द वर्ल्ड विथ यू, और मैं हूँ आपका अपना आरजे भाविक शाह। हम फिर से आ गए हैं धूम मचाने के लिए, और आज सुबह हम लाइव आ गए हमारे स्टूडियो से स्ट्रेट फ्रॉम द कैंगरू पॉइंट, और आज का दिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और जैसे आप सभी को पता है कि सर्दी आ गई है, थोड़ी लेट आई है पर बहुत ही दमदार आई है। क्या बात है, आज सुबह इतनी ठंडी लगी, मुझे लग रहा था क्या करूँ, इतनी ठंडी हो गई। इट वॉज अ वेरी सडन चेंज, बट डोंट वरी, आर आज भाविक शाह इज़ हियर। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत से तड़कते भड़कते गाने, और आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच जो भी हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है। हम आपका साथ देंगे 10 बजे तक। शो का नाम है नमस्ते वर्ल्ड, और हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारे तड़कते भड़कते गाने। आप शायद अभी सुन रहे होंगे मुझे कहीं जाते हुए, जस्ट अभी उठते हुए, या अपने फैमिली के साथ सैटरडे मॉर्निंग की मजा लेते हुए। नो वरीज, विदाउट डूइंग एनी डिले, ये लेके आया है आपके लिए नया सॉन्ग।
1: चली गई, आ गई, उधर करो, फिर चली गई यार, चेक करके नहीं ला तू यार।

जी हाँ दोस्त, आई होप कि आप सभी को ये गाने पसंद आए होंगे. जैसे आप सभी को पता है, आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस एंड ड्रम इनटू बॉलीवुड जॉनरा. तो हम आपके लिए लेके आए हैं तीन चार ऐसे गाने जिसके सुर तो क्लासिकल है लेकिन उसकी सोल थोड़ी मॉडर्न है. आई होप आपको ये गाने पसंद आएंगे. हम आपके लिए पेश करते हैं ये नए तरीके का नया सॉन्ग विद द क्लासिकल रूट.

0: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell them your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
1: Station sponsor.
2: News Sandesh. Breast Screen Queensland ki or se hai. स्तन जांच हर दो वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जाँच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 1820 50 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अट स्टेशन प्रायोजक।

यह संदेश ब्रेस्ट स्क्रीन क्वींसलैंड की ओर से है। स्तन जांच हर दो वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जाँच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 1320 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अधिष्ठान प्रायोजक।